0: भी कुछ पाया बिजना
1: हाँ
0: अबे विन फॉर यू
1: चलो
0: मी जोए नवंबर वन अल्फा लिमा ये बाय वन B55 original.
1: Did you pass?
0: B1 Juliet. Correction. 1 November. Alright, it's gonna be Juliet, November 1. Alpha Lima, 1. Alpha Papa 8. Charlie Mike, 530215.
1: Important.